प्रकाशा सगल मनोरथ पूरी आशा तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पटाणियो कर जोड़ कल सुजस बखाणियो भगत जोग को जैतवार हर जनक उपाय शब्द गुरु।

मन ये किसे काम नहीं आने, इसलिए अवर काज तेरा कित ना काम मिल साध संगत।

बिना सिमरन तो तेरा जीवन किसे भी लेखे नहीं। सेवा और सिमरन तो बिना इस तरह जीवन है, कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ दे वेद व्यास कहंदे हन, त्रिग सेवा बिन हाथ पैर होर निफल करन।

जीवन आनंदमय हो गया। जिस जीवन नु कोई डर सी ना भाई कोई धन चुरा ना लवे, आज सुख दी नींद सौंदा है, हर वेले सिमरन करदा है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी नु आके कहन लगा, महाराज हुन कोई होर सेवा बख्शो। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सूई दिती, आख्या भाई दुनी चंद आ साडी सूई रख लै अमानत, ते दरगाह विच तेरे पासों लै लवां। सूई लै आया, घर वाली नू आके जिक्र कीता, भाई अज सतगुरां ने ए सूई दिती है, ते आख्या दरगाह

रात दिन कर पिया मजूरियां जितनियां मर्जी हन तू जिम्मेवारी दियां पंडा अपने सिर ते रख लै अंत वेले तेरी किसे ने

0: भरण सकै महिमान जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी एक मन पुरख ते आए बरदाता संत सहार सदा बखियाता तास चरण ले हृदय बसावो तौ परम गुरु नानक गुण गाओ तास चरण ले हृदय बसावो तौ परम गुरु नानक गुण गावो सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत समूह माई पाई गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ अजी कहिंदे हन जिस नूं किसे कम दा चज ना होवे तरीका ना होवे जीवन दा ढंग ना आउंदा होवे गुरु की मर्यादा विच चलण तों प्रतिकूल जिहड़ा इंसान है उस दा नाम कुचजी भाव खोटे उगणा नाल भरी होई ते शुभ गुणा तों खाली। मंज कहिंदे हन मैनू हे वाहिगुरु मैं तां मंज
1: मंज कुचजी अमावण डोसड़े
0: मैं कुचजी हां मैनू मत नहीं है मैनू अकल नहीं है जिवें भाई गुरदास जी लिखदे हन हौं अपराधी गुणे गार हौं बेमुख मंदा चोरी आर जो आर हौं पर घर जो हंदा। इस शब्द विच वी औगुण गिणे हन कि इन्हां वीआं औगुणां दे मैं संयुक्त हां हे प्रभु मेरे ते दयालता करो इन्हां औगुणां तों मैनू बचा लवो। होय अपराधी गुनहगार हां बेमुख मंदा चोरी आर जो आर हां पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास घाती आ किरत घण मैं को नरखंदा सिमर मुरीदा ढाडियां सतगुर बखसंदा। वी औगुणा नाल मैं भरपूर हां पर तेरी शरण विच आया हां। संत शमेर सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जीवन लिखिया होया पिछले दिनी पुस्तक छप गई है। उन्होंने अपनी वल्लों निम्रता सतगुरु जी के चरणों विच अपने औगुणा की लिस्ट इस प्रकार रखी है। कामी अकुटल कूर कपटी अकिरत घणी कटु काल ही कलंकी कली काल के अधीन हूं। हे कलगीधर पिता मैं टेढ़े मन वाला हां मन विच मेरे कपट है कीती नूं जानदा नहीं इस वास्ते अकिरत घण हां। कामी अकुटल कूर कपटी करित कणी कटु काल ही कलंकी कली काल के अधीन हूं। खोटो खाल खामी खूब खंडत खराब करो खालक न जान्यो खल्यो खाल न प्रवीन हूं। गाफल गुसैल गम रूरी भरियो ज्ञान हीन गामी गण्यो अवगनी गुनानन मैं पीन हूं। ਘਰ ਕੇ ਨ ਕਾਮ ਕੋ ਆਰਾਮ ਕੋ ਨ ਨਾਮ ਕਛੂ ਰਾਮ ਮੋਹਿ ਤਾਰੋ ਤਬ ਜਨ ਨਾਥ ਦੀਨ ਹੋ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਹਾਂ। ਉੱਤਮ ਭਗਤੇ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਚੱਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਾਵਣ ਡੋਸੜੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਡੋਸੜੇ ਮਹਿਣੇ ਦੋਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਅਮਾਵਣ ਮਹਿਣੇ ਮਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ।